0: पाबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 10:31:08। ये वक्त है कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स का, तो तैयार हो जाइए अपना संदेश और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम खोल चुके हैं अपने दिल का मेल बॉक्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और लिख भेजिए हमें अपने दिल का संदेश अपने नाम और अपने पते के साथ। ये मेल आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com पर। दोस्तों, आप हमें कोई शायरी, कोई अच्छी लाइनें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो, वो भी लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे आज के प्रोग्राम में शामिल करें, और तब तक आप सुनिए ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म जानी दुश्मन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और बोल वर्मा मलिक के।

दोस्तों आइए अब रुख करते हैं दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हमें किसका प्राप्त हुआ है। तो पहला संदेश हमें चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा का और ये लिख रहे हैं, नमस्कार भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जी हम भी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिर कर अलग हो जाते हैं। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत बात कही है आपने और मुझे लगता है कि आज के समय पर इन बातों का ध्यान में रखना और अमल में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर गांव उत्तर प्रदेश से और इसे लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण लोखंडे का, महाराष्ट्र से ये हमें लिख रहे हैं। इनके साथ इस मेल में शामिल हैं कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे और रक्षता लोखंडे। इसी के साथ अगला मेल हमें उत्तम नगर दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इसे लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अफरोज शेख, पता नेमुआ, सुपौर बिहार से हमें लिख रहे हैं मेल। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगला मेल हमारे पास पहुंचा है मेरठ से, ये मेल हमें अनिल जैन लिख रहे हैं। इनके साथ जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर

एक्वियम भी शामिल है इस मेल में। और अगला मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का प्राप्त हुआ है, तो आपका भी बहुत स्वागत है इस मेल में। दोस्तों अगला मेल हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से सुविंदर सिंह जोड़ा स्वीटी दीवाना का प्राप्त हुआ है और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म हिम ही रांझा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आइए श्रोताओं, एक नजर फिर डालते हैं अपने दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि अगला मेल हमें किसका प्राप्त हुआ है। और जब तक मैं मेल पढ़ूं तब तक आपको याद दिला दूं, अगर आपने भी अब तक हमें मेल नहीं किया है तो आप हमें जल्दी से मेल कर दीजिए और नोट कर लीजिए हमारे ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com पर। आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं आपके खूबसूरत मेल। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद का। ये लिख रहे हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिए, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं अशरफ अली, नवाब अहमद, बाबुल कश्यप, सलीम अख्तर। इसी के साथ अगला मेल हमें वीरमगंज जंक्शन से अजीत भावसार का प्राप्त

हुआ है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि नहीं कोई फिक्र करता कुठारा घात करता है, हमारी पीठ पीछे वो हमेशा बात करता है, भरोसा तोड़कर देखो दिए आंखों में आंसू बस, करे नाटक दिखावा भर बहुत उत्पात करता है, समझ आती नहीं उनको जो पहले से ही शातिर है, भरी महफिल में बस शब्दों की सुन बरसात करता है। भाई बड़ी ही अनुभव युक्त बात कही है आपने, तो इस सुंदर लाइनों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है ऊपर कोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से और इस मेल को लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है शेरवानी स्कूल गंज गुड़वारा से और इसे लिख रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मुंबई से और इसे लिख रहे हैं अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा और ये खूबसूरत लाइन भी शामिल कर रहे हैं अपने मेल में। ये लिखते हैं कि फूल देते खुशबू, फल देते मिठास, पेड़ चुपचाप निभाते रिश्ता खास, हरियाली का साया, ठंडी हवा की सौगात, पेड़ों के बिना अधूरी है सारी कायनात। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों शिव नारायण का जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ये मेल लिख रहे हैं और एक बेहद ही खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म नदिया के पार से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं आज के कुछ और स्पेशल संदेश जो आपने हमें लिखकर भेजे हैं, आज के प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगला मेल हमें मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं, वर्मा सर जी वेलकम, तो जी आपका भी बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है कृष्ण नगरी मथुरा से और इस मेल को लिख रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। अगला मेल हमें नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इस मेल को लिख रहे हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद भारती का और इनके साथ इस मेल को लिख रहे हैं सलीम अख्तर। इन्होंने लिखा है, आदाब सर जी, कोई भी सॉन्ग में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो देखिए जनाब, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से और इस मेल को लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इन्होंने लिखा है, श्रीमान राम प्रकाश वर्मा जी नमस्कार, तो जी आपको भी नमस्कार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दतरेंगी से और इसे लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और इसी के साथ एक और मेल हमें मोहाली चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है। माफ कीजिएगा, कई बार आप सही शब्द नहीं लिखते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइप करते वक्त ध्यान दें। ये मेल हमें लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है सोमेश्वर उत्तराखंड से और ये लिखने वाले हैं दीपक जोशी, गणेश जोशी, विमला जोशी, माया जोशी, अजय नेहा, शालिनी, आयुष और हिया। ये खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

दोस्तों डालें नजर मेल बॉक्स की तरफ तो कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं, और ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का ये मेल हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है, राम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, एनी सॉन्ग में मैसेज ले लीजिए। तो देखिए हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का, ये मेल हमें लिख रहे हैं और साथ ही ये लिख रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स पेश करता आदरणीय राम प्रकाश जी आपको सादर नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनकर हमें अच्छा लगा। तो जी आपका मेल बहुत दिनों बाद पढ़कर हमें भी अच्छा लगा। अगला मेल हमें रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन का मेल हमें प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं कि राम प्रकाश जी नमस्कार, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इस खूबसूरत गीत में शामिल कर लिया। अगला गीत हमें, माफ कीजिएगा, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल मक्कड़ का, और ये मेल हमें लिख रहे हैं, इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है, माफ कीजिएगा। और दोस्तों आज के कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि विशाल यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसका मतलब है कि इश्क वो तकलीफ है जिसका इलाज आसान नहीं होता। अपने किसी खास से मिलने की चाहत कुछ इस तरह से दिल और दिमाग पर छा जाती है।
1: जैसे जैसे अपने किसी खास से मिलने की चाहत पूरी होती है या मिलने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे इश्क और दीवानगी दोगुनी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बीमारी का इलाज करने पर वो बीमारी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो।
0: इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता। जैसे कि खुशबू को आप चाहे कितने ही कमरों में बंद क्यों ना कर दें, उसकी महक बाहर आ ही जाती है। ठीक उसी तरह किसी के दिल में छिपा हुआ प्यार भी लोगों की नजरों से छुप नहीं पाता, ये अपने आप जाहिर हो ही जाता है।
1: कहते हैं कि अगर एक बार किसी के दिल में सच्चे प्यार का एहसास हो जाए तो दुनिया की कोई भी मुसीबतें या रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी आंधी प्यार की इस आग को बुझा नहीं सकती।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।

0: दोस्तों, अब जब बात दिल और मोहब्बत की चली है तो फिर एक बात ये भी कह दी जाए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सच्ची मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती।
1: इसके लिए एक खास और पवित्र दिल की जरूरत होती है। जैसे हर धुन हर इंस्ट्रूमेंट पर नहीं बज सकती, वैसे ही प्यार के जज्बात हर साधारण दिल में नहीं पनपते। वैसे कहने को तो ना जाने कितने ही लड़के और लड़कियां आजकल ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें प्यार हो गया है और अब हम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे।
0: लेकिन सच इसके बिल्कुल अलग होता है। जरा सी दोस्ती को जो प्यार का नाम दे देते हैं, वो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बाहर भी हो जाते हैं। फिर बहाना चाहे समाज का हो या परिवार के ना मानने का, लेकिन सच तो ये है कि उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता होता। वो बस टाइम पास करते हैं।
1: और ये जो टाइम पास करते हैं, उनके अलग होने के बहाने भी अलग होते हैं। वो कभी कहेंगे कि परिवार नहीं मान रहा, कभी कहेंगे कि क्या करूं, हमारी सोसाइटी तुमसे बहुत ऊपर है, या फिर तुम कमाते कितना हो।
0: बहाने तो बहुत हैं, मगर जिसका दिल टूटता है, दर्द वही जानता है।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: वैसे अगर सच में कहा जाए तो प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं होता।

0: के प्यार एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास भी है। और जब दोनों ही चाहने वाले इस बात को समझते हैं तो उनकी मंजिल आसान हो जाती है। हो सकता है कि शुरू में किसी के परिवार वाले या किसी का समाज इस बात को ना समझे,
1: लेकिन जो दिल से साथ होते हैं वो परिवार को और समाज को ठीक से समझा ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग इस वजह से भी तैयार नहीं होते कि दोनों में से कोई शायद अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब ना हुआ हो,
0: तो आगे चलकर वो जीवन का बोझ कैसे उठाएगा, ये भी एक टेंशन की बात है। लेकिन अगर दिल में सच्ची चाह हो तो पुरुष हो या महिला, जिंदगी के किसी भी दौर में कामयाब हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी पैसा कमाने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। जरूरी है तो बस उन्हें समझने की जरूरत है, तो बस उन्हें समझने की।
1: अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने समवन स्पेशल की खुशियों का ख्याल रख सकते हैं या नहीं। वैसे कुछ भी कहा जाए, प्यार को चीज ही ऐसी है कि अगर किसी को दिल से हो जाए तो फिर दोनों ही लोग एक होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी के सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.merawazood.com।

0: facebook.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद।
1: बताओ और कमाओ, तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 11:25 और 44 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम तस्वीर में।

आज के कार्यक्रम तस्वीर में हम आपकी आंखों के सामने लाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिसे देख के बाद आप घर बैठे ही इस गर्मी के मौसम में भी ठंडक का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि आज जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस जगह को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो भाई देर किस बात की, चलिए आपको लेकर चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत सुहाने सफर पर।

मन चाहता है कि कुछ पल ऐसे मिल जाएं जहां सिर्फ सन्नाटा हो, पहाड़ों की ठंडी हवाएं हो, नीले आसमान के नीचे सफेद बादलों का कारवां हो और दूर तक फैली प्रकृति बस मुस्कुराती हुई ही दिखाई दे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही जादुई दुनिया में, जिसे देखकर लगता है कि मानो धरती ने यहाँ खुद अपने हाथों से स्वर्ग सजाया हो। और इस जगह का नाम है स्पीति घाटी। जी हाँ, स्पीति का अर्थ होता है मध्य भूमि, यानी भारत और तिब्बत के बीच की धरती। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक फैली शांत वादियां हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। स्पीति घाटी में मुख्य रूप से स्पीति नदी बहती है और इसके साथ कई अन्य नदियां भी इस घाटी में शामिल होती हैं। स्पीति घाटी चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी होती है। इसके उत्तर में लद्दाख, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में बुशहर और पश्चिम में कुल्लू शामिल है। भारत और तिब्बत के बीच बसी इस घाटी ने सदियों से संस्कृति, आध्यात्म और प्रकृति को अपने आंचल में समेट रखा है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति अपनी खूबसूरती बरसाने में कोई कमी नहीं रखती और इसीलिए स्पीति में लगभग 250 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। रात के समय यहाँ तारों की चादर दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में आसमान और तारे आपके बिल्कुल पास आ गए हों।

दोस्तों, स्पीति की पहचान केवल उसके पहाड़ ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा बसती है यहाँ के मठों में, और उनमें सबसे प्रसिद्ध मठ है की मोनेस्ट्री। तकरीबन 1000 साल पुराना ये बौद्ध मठ पहाड़ की ढलान पर इस तरह से बना हुआ है कि मानो बादलों ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया हो। सुबह जब यहाँ घंटियां बजती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर जाता है। यहाँ रहने वाले भिक्षु सादगी, धैर्य और प्रेम का संदेश देते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मन अशांत हो तो एक बार की मोनेस्ट्री की पहाड़ी पर बैठकर यहाँ का सूर्योदय देख लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर स्पीति की बात हो और चंद्रताल झील का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। चंद्रमा के आकार की यह झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह इसका रंग नीला, दोपहर में फिरोजी और शाम होते होते इसका रंग सुनहरा हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हर घंटे कोई नई तस्वीर बना रही हो। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रताल का दृश्य जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, चंद्रताल के अलावा यहाँ कई और भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे चीचम ब्रिज, धनकर झील और धनकर मठ, डेमुल गांव, काजा, कुंजी मठ, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंजुम दर्रा, लोसर, शेरखाग मठ, माने योगमा गांव, मिट्टी का गांव, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तावो मठ और उसकी गुफाएं, और हिक्किम गांव भी आप जा सकते हैं। हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है और यहां से भेजे गए संदेश यानी पत्र हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।

विवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में

बटर वाली चाय बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। स्पीति घाटी केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही नहीं बल्कि रोमांच का भी दूसरा नाम है। यहाँ पर बाइक राइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का अलग ही आनंद आता है। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया दृश्य और एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। दोस्तों, अगर आप भी स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच का, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।

दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं स्पीति घाटी तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको मनाली या शिमला में से किसी भी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो शिमला से रेकोंग पेओ के लिए सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ना जरूरी है और फिर इसके बाद काजा के लिए जाना होगा। इस सफर में आपको तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अगर आप मनाली होकर जाना चाहते हैं तो मनाली से भी आपको सुबह 5 बजे वाली बस पकड़नी होगी जो कि आपको काजा तक ले जाएगी। वहीं अगर आप ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो आपको जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। ये रेलवे स्टेशन स्पीति घाटी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और स्पीति घाटी से तकरीबन 360 किलोमीटर दूर है। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पठानकोट पहुंचना होगा और वहां से आप टॉय ट्रेन पकड़कर जोगिंदर नगर जा सकते हैं। उसके बाद आप मनाली होते हुए स्पीति घाटी जाने के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग का प्रयोग करना चाहते हैं यानी आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ या शिमला जाना होगा और यहां से आप कुल्लू हवाई अड्डे तक की फ्लाइट ले सकते हैं। कुल्लू हवाई अड्डे पर टैक्सी, एटीएम और निशुल्क सामान ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। कुल्लू हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप स्पीति घाटी के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्पीति घाटी के सफर पर निकलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो और साथ ही आप कुछ गर्म कपड़े भी रख लें और यहां जाने से पहले मौसम का हाल भी जरूर जान लें।

दोस्तों, यात्रा सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होती। यात्राएं हमारे व्यक्तित्व में नई समझ, नए अनुभवों को जोड़ती हैं, या यूं कहिए कि हमें खुद से भी मिलवा देती हैं। स्पीति घाटी की यात्रा भी एक ऐसी ही यात्रा है। अगर कभी जीवन में अवसर मिले तो आप यहाँ जरूर जाइएगा। हो सकता है कि यहाँ की खामोशी आपके भीतर का शोर हमेशा के लिए शांत कर दे। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं राम प्रकाश वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आज की तस्वीर में फिलहाल इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: सरकार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by

आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी, आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई। आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। यह हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल उपयोग यानी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक बैग को गलने में करीब 100 से 500 साल तक का समय लगता है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जमीन और समुद्र के जानवर इसे भोजन समझकर खा जाते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। नालियों को जाम करता है, हवा और पानी को जहरीला बनाता है ये प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बाजार जाते समय हमेशा कपड़े या जूट के थैले को साथ लेकर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दीजिए। और जब भी आप मार्केट जाएं ना, हमेशा घर से कपड़े का या जूट का बैग साथ लेकर निकलें। जैसे पहले होता था, अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे, वो लेकर जाइए और अपने पास रखिए। प्लास्टिक लेने से मना कर दीजिए। फल और सब्जियां अलग अलग रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय सूती की छोटी छोटी थैलियां आप बना लीजिए। जो पैकेज दालें और अनाज बाजार में खुला लिया जाता है सामान, उसमें प्लास्टिक की पैकिंग जो होती है वो ना ले, बल्कि खुला सामान लेने को प्रेफरेंस दे। किचन में मसाले, दालें और राशन जो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं ना, उसील या कांच के जार का इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटे छोटे उपयोग हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्लास्टिक को नो कह सकते हैं, नो यूज टू प्लास्टिक। जो हम ये स्ट्रॉ लेते हैं ना प्लास्टिक के, उसकी जगह भी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफर के दौरान जो हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें बार बार खरीद लेते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। एक स्टील की बोतल आप अपने साथ रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो दिन भर की आपकी जरूरतें हैं, आपकी आदतें हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। और आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या प्लास्टिक बैग लेकर जाते हैं, और नहीं जाते तो प्लास्टिक बैग के अलावा कौन सा वो ऑप्शन है जो पर्यावरण के अनुकूल है और आप इस्तेमाल करते हैं, हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि बाजार आप जाते हैं तो किस तरह का बैग आप लेकर जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, प्लास्टिक के ऑप्शन के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें मेल्स भेजिए, हम आपकी मेल्स को शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं शमशाद बेगम उषा मंगेशकर की आवाजें ब्लफ मास्टर फिल्म से। और हमने एक प्रश्न कार्यक्रम के शुरू में ही पूछ लिया है कि प्लास्टिक की थैली के बजाय आप बाजार जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं। तो हमें ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो सबसे पहली ईमेल आई है वो मैं पढ़ देती हूँ। नवीन भाटिया मोती नगर से लिखते हैं कि हम कपड़े का थैला लेकर जाते हैं। और रोहिणी से लिखते हैं, डॉक्टर विनोद, पुनीत रावत, संजय, प्रवीण कुमार और प्रदीप, ये लिखते हैं कि जूट का बैग लेके जाते हैं जो सबसे मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इसमें आप भारी राशन और सब्जियां भी आसानी से ला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। इस तरह से आप हमें ईमेल भेजते रहिए क्योंकि हम पूछ लिया है हमने आपसे एक प्रश्न। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके

अनुभवों से सीखना ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सहयोग देकर उनके जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि सपनों को पूरा करने की एक उम्र होती है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ सपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे सपने पूरे करके, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। अनेक वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कलाएं सीख रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। उम्र तो केवल एक नंबर है। यदि मन में उत्साह और आत्मविश्वास हो तो हर सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जीवन के दूसरे दौर में नई शुरुआत करके सफलता हासिल की है। तो निकालिए उन रुचियों को, उन सपनों को जो कभी यादों के पिटारों में दब गए हैं। पहन लीजिए उन यादों के संदूकों को, निकालिए, एक लिस्ट बनाइए, सपनों को फिर से खोजिए और अब समय है उन्हें पूरा करने का। चाहे शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई आर्ट सीखनी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इसमें उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए और परिवार का दायित्व है कि उनका साथ दे, उनको प्रोत्साहित करें।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में काला बाजार फिल्म से। और हमें ईमेल्स और आ गई हैं कि लोग प्लास्टिक बैग को लेकर कितने सचेत हैं कि बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करते। अब

रश्मि कपूरिया गौरी शंकर पुल की तक्षरा प्रीति और मिली वैशाली गाजियाबाद से लिखती हैं कि वो तो डेनिम बैग लेकर जाती हैं। पुरानी जीन्स को काट कर घर पर ही बहुत मजबूत और फैशनेबल थैला बनाती हैं और वही बाजार लेके जाती हैं और उनके पतिदेव भी यही लेकर जाते हैं और बच्चों के लिए भी उन्होंने कागज के बैग बना रखे हैं ताकि हल्के सामान को बच्चे ले जा सकें और बाजार से ला सकें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अगर बाजार से सामान लेने जाते हैं तो अपने कागज के बैग बना रखे हैं, यानी जो लिफाफे पहले बना करते थे वो बना रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है।

सके और बाजार से ला सके। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अगर बाजार से सामान लेने जाते हैं तो अपने कागज के बैग बना रखें, यानी जो लिफाफे पहले बना करते थे वो बना रखें। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि सामान का इस्तेमाल भी हो गया, पुरानी जीन्स को काट कर डेनिम बैग बन गया और आप लेके जाते हैं, खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए ना कितने अच्छे अच्छे सुझाव हमारे श्रोता दे रहे हैं। तो आप भी भेजिए ऐसा सुझाव कि आप क्या करते हैं अगर बाजार जाते हैं तो कौन सा बैग लेके जाते हैं, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। और हमारा ईमेल आईडी फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो हम बुजुर्ग के लोगों की बात जरूर करेंगे और उसी पर तो हमारा कार्यक्रम आज आधारित है। बुजुर्ग जो है वो समाज की अमूल्य धरोहर है, या कहिए जड़ है। उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके जीवन से मिली सीख नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। आज जब युवा तेजी से बदलती दुनिया में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह और सुझाव उन्हें सही दिशा दिखा सकती है। उनके अनुभवों की विरासत नई पीढ़ी को मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर है, इसलिए हमारे बड़े जो घर में होते हैं ना, उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी और हम है, हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, हमें मार्गदर्शन देती है। तेजी से बदलती दुनिया में जीवन, उनके जो जीवन अनुभव हैं, हमें और युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अनुभवों की विरासत है हमारे बुजुर्ग।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमने अपना ईमेल आईडी आपको बताया क्योंकि जो बातचीत हमारी आपसे हो रही है वो एक तरफा नहीं रहनी चाहिए, दो तरफा रहनी चाहिए। हम कुछ बोले आप जवाब दीजिए। fmgoldg@gmail.com पर आप बताइए कि आप जब बाजार जाते हैं तो कैसा बैग लेकर जाते हैं। प्लास्टिक मुक्त अगर देश को करना है, पर्यावरण को अच्छा करना है तो क्या करते हैं। हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। अब एक और मैसेज मिला है बहादुरगढ़ से प्रीति गर्ग, सत्यकाम गर्ग और स्वस्तिका का। ये लिखते हैं कि इन्होंने फल और सब्जियां खरीदने के लिए पारंपरिक बांस की टोकरियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये बांस की टोकरियां जब भी पहाड़ों पर गए थे तो वहां से लेकर आए थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप बांस की टोकरियां लेकर आए। सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि कहीं जाएं तो ऐसा पर्यावरण अनुकूल आइटम लेकर आए घर में ताकि प्लास्टिक बैग की जगह इस्तेमाल किया जा सके। और अब बात कर रहे हैं फिर से अपने बुजुर्गों की। विकास और आधुनिकता बहुत जरूरी है लेकिन अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को भूल जाना उचित नहीं है। नई तकनीक और नए विचारों को अपनाने के साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए। यही संतुलन तो समाज को आगे बढ़ाता है। प्रगति और विकास के लिए नए विचारों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पुराने मूल्य अनुभव और बुजुर्गों को त्याग दें। पुराना और नया एक दूसरे का पूरक हो सकता है लेकिन इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक हमें सुविधा देती है जबकि पुरानी संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। यदि हम केवल नए के पीछे भागेंगे तो अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन कमजोर भी पड़ सकता है।

0: लहरें डोले
1: झूम झूम के
0: साहिल का मुँह
1: झूम झूम के
0: ऐसे में क्यों हम
1: दीवाने हो जाए।
2: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत फिल्म ओपेरा हाउस से था। और जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब ईमेल द्वारा आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, राजू अग्रवाल, केशव, विनोद, ममता चौधरी जिला हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि हमने वो जमाना भी देखा है कि विवाह शादियों में खाना खाने जाते थे, दुकान में सामान लेने जाते थे, बर्तन घर से लेकर जाते थे। जी हाँ, पहले प्लास्टिक के लिफाफे नहीं थे, साफ सुथरा वातावरण था। आज भी मैं अपनी साइकिल पर कपड़े का बैग हमेशा साथ रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार है। हमें और ईमेल मिली है चरण दास जी की, और ये मेल भी मैं पढ़ देती हूँ। ये लिखिए रामेश्वर राव जी ने लिखिए शकरपुर से, लिखते हैं कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में चाय पीने के लिए एक कांच का ग्लास रखता हूँ ताकि पेपर ग्लास को हम अवॉइड कर सके। और लिखते हैं कि हमारी फैमिली फंक्शंस के लिए हम सब फैमिली मेंबर्स ने मिलकर 100 ग्लास खरीदे हुए हैं, प्लेट्स खरीदी हुई हैं छोटी और बड़ी, ताकि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। इस तरह से ईमेल हमें भेजती रही है। देखिए ना, खतों का सिलसिला चला करता था पहले। पहले लोग खत लिखते थे, पहुंचता था, अब तो कितनी जल्दी है, ईमेल आप टाइप करेंगे और हम तक पहुंच जाएगी। फिर क्यों सोच रहे हैं आप,

कच्चे धागे फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब जो पर्यावरण की बातें चल ही रही हैं, तो एक ईमेल और हमें मिल गया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम लेकर जाते हैं कॉटन का बैग। देखिए कितने अच्छे अच्छे सलाह, मशवरे और सुझाव हमें मिल रहे हैं, और हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं कि आगे पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बुजुर्गों से पूछेंगे ना, तो पहले यही होता था, प्लास्टिक के बैग्स नहीं होते थे, वो प्लास्टिक के बैग्स के बजाय एक कॉटन का, या जैसे घर में पुराने कपड़े टी शर्ट्स बच जाती थी, उन टी शर्ट्स को भी काट कर सिया जाता था, सील लिया जाता था, एक बैग बनाया जाता था। हर घर में ऐसा ही होता था। जी हाँ बिल्कुल, और आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि प्लास्टिक की थैलियां नहीं हुआ करती थी, एक थैला बनाया जाता था पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से अगर सुंदर सुंदर है वो भी बनाए जाते थे, सिलाई मशीन पे उनको सील कर बैग या थैला बना लेते थे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और बाजार जा रहे हैं तो लेकर जाते थे। अब यही तो पुरानी परंपराएं हैं जो आगे ले जाने का कार्य करते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के माध्यम से ही तो आगे बढ़ती है। वो हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान कितनी समृद्ध है। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को समझती भी है और अपनाती भी है। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और लोकाचार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में हमारे बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे त्योहार, रीति रिवाज, लोक कथाएं, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। आधुनिकता के दौर में जहां परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक उन्हें जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। उनकी बदौलत हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और वरिष्ठ नागरिक न केवल परंपराओं के संरक्षक हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सेतु का कार्य भी करते हैं हमारे बुजुर्ग।

ये गीत आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी आवाजें। आप हमें ईमेल प्राप्त हुई है रेखा देवी, निर्मला देवी, प्रीति चौधरी की हिसार हरियाणा से। वो लिखते हैं कि हम प्लास्टिक बैग का जो लिफाफा है वो फट जाता है, इसलिए हम कपड़े का बैग जरूर साथ रखते हैं ताकि सामान बिखर नहीं पाए। और बाजार में लोग आप पर हंसे ना, इसलिए आपको जरूरत है कि आप कपड़े का बैग ही साथ रखें। जी हाँ, ज्यादातर लोग यही कह रहे कपड़े का बैग। और एक मेल हमें, एक मैसेज और मिला है हमें फरीदाबाद से नरवीर, त्रिलोक और मोहित का। ये भी यही लिखते हैं कि आप कपड़े का बैग लेके जाएं, इन्हें मोड़कर जेब या गाड़ी में रखना आसान होता है और गंदा होने पर इन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, यानी हमें बहुत सारे सुझाव और आइडियाज मिल रहे हैं आज मेल पर कि पर्यावरण अनुकूल हम क्या काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को हम नो कह दें, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और हमें पर्यावरण को खुश रखना है। पर्यावरण खुश रहेगा तभी तो हम भी खुश रहेंगे।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगनरी गीत हमने लिया था पारस मणि फिल्म से, लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की थी आवाजें। बातें चल रही थी बुजुर्गों की, अब बुजुर्गों की बात चली है और देखिए बुजुर्गों की बात है हमारे घर में जो हमारे बड़े रहते हैं दादी नानी है, उनके किस्से कहानियां कैसे भूले जा सकते हैं। दादी नानी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, साहस और संस्कारों की सीख मिलती है। ये कहानियां बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ती हैं। नानी माँ की कहानियां, दादी माँ की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अनमोल खजाना है। दादी नानी की ये जो कहानियां होती है ना, इससे बच्चों का सिर्फ मनोरंजन नहीं होता बल्कि बच्चों को जीवन के गहरे नैतिक मूल्य और समझदारी और साहस भी मिलता है। ये कहानियां हमें सही गलत का फर्क सिखाती हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। जब हम दादी या नानी या नाना या दादा की गोद में सिर रखकर इन कहानियों को सुनते हैं तो हम अपने परिवार और संस्कारों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और ये जो दादी पोते का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता बेहद गहरा भावनात्मक और प्यार से भरा होता है। ये कहानियां हमें परंपराओं से जोड़ती हैं। जो दादी नानी दादा नाना प्यार करते हैं वो बिना किसी शर्त के ढेर सारा प्यार होता है, एक मजबूत भावनात्मक आधार होता है जिंदगी जीने का। कई बार जो कई परिवार जो होते हैं उसमें नानी दादी बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होती हैं, बड़ी मार्गदर्शक होती हैं जिनसे बच्चे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म से शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजें। और देखिए कार्यक्रम का समय अब सिमट गया है, इसलिए कार्यक्रम घर आंगन संपन्न करने की राधा पाठक को दे इजाजत है। आप सुनते रहिए ये गीत।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस यानी के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी

0: शिक्षा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister

नमस्कार, आकाशवाणी की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। हर अभिनेता या अभिनेत्री की अपनी अलग शख्सियत होती है, चेहरा मोहरा, चाल ढाल, बोलने का अंदाज और गाने या नाचने का अंदाज। और आज कलाकार बेमिसाल की

इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही अनोखे एक्टर से रूबरू कराएंगे, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग के बेताज शहंशाह या फिर यूं कहें प्रिंस।

नमस्कार, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल के आज के खास मेहमान हैं फिल्म अभिनेता राजकुमार। आज 3 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में डोरालाई बलूचिस्तान में हुआ था। मूल रूप से आपका परिवार कश्मीरी पंडितों का परिवार था जो श्रीनगर से बलूचिस्तान गया था। जन्म के वक्त इनका नाम कुलभूषण पंडित रखा गया। इन्होंने अपना नाम कुल का आभूषण या गहना सार्थक किया और हिंदी सिनेमा के सबसे अलग पहचान रखने वाले अभिनेताओं में से एक कहलाए।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता राजकुमार की और आज आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। 1940 के दशक में राजकुमार बंबई आए और बंबई पुलिस में इन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। 1960 के दशक में इन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की जो एक हवाई उड़ान में इनसे मिली थी और फिर इनके तीन बच्चे

रहो जी। राजकुमार ने अपना फिल्मी सफर 1952 में फिल्म रंगीली से शुरू किया, फिर 1952 में ही अनमोल शहर फिल्म आई, 1953 में आबशार, 1955 में घमंड। इन सभी फिल्मों का राजकुमार जी के फिल्मी सफर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया। मदर इंडिया से आए राजकुमार निकलकर एक बड़ा कलाकार, एक स्टार।

0: भर दिन बीते भैया।
1: मदर इंडिया फिल्म के बाद रिलीज हुई एस वासन की फिल्म पैगाम, जो कि एक सामाजिक फिल्म थी, राजकुमार जी को उनके रोल के लिए बहुत सराहना मिली। वो एक जिम्मेदार बड़े भाई की भूमिका में थे और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड भी मिला।

0: अरे गजब भैया रे भाई हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए,
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ ना पियाए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए, आदमी भी तो ऐसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए,
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए, हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या
0: मंदिर में जूते

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात कर रहे हैं सबसे स्टाइलिश एक्टर की, हिंदी सिनेमा के राजकुमार जी के बारे में। 60 के दशक में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजकुमार जी अब तक अपने आप को एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में स्थापित कर चुके थे। क्या समझे जानी, 1961 में वो घराना फिल्म में राजेंद्र कुमार और आशा पारेख के साथ नजर आए। फिर एक साल के अंतराल के बाद वो राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के साथ फिल्म दिल एक मंदिर में नजर आए। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और राजकुमार जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का लोकप्रिय पुरस्कार भी मिला।

एक से एक हिट फिल्में राजकुमार जी ने दी। इनकी फिल्म फूल बने अंगारे भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद दिलेक मंदिर के बाद 1964 में राजकुमार जी ने रामानंद सागर की बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म जिंदगी में काम किया। 1965 में जब दूसरे हीरो सेकंड लीड का किरदार निभाते निभाते राजकुमार जी को कई साल बीत गए थे, तब एक फिल्म आई थी वक्त, और राजमहेश्वरी जी की फिल्म काजल में इन्होंने काम किया। दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, ये आपको आपने गौर फरमाया ही होगा। तो हम ये सोच रहे थे कि आपको क्या हम वक्त फिल्म का एक गीत सुनवा सकते हैं। कौन सा गीत? वही गीत जो सबको बहुत ज्यादा पसंद है, ए मेरी जोहरा जबी। देखते हैं ये गीत कहां पे लुप्त हो गया है। राजकुमार जी की ये कमाल की बात थी कि उनमें स्क्रीन प्रेजेंस बहुत थी। अगर पूरी फिल्म में उनका जो रोल था चाहे 15 मिनट का हो, वो ऐसी छाप छोड़ते थे कि बड़े से बड़े अभिनेता जो है थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते थे। स्क्रीन प्रेजेंस का ये कमाल था राजकुमार जी की। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक गीत सुनाते हैं, ऐ मेरी जोहरा जबी। जैसे कि हमने कहा, याद आ जाती है ना पूरी, देखिए क्या माहौल था, है ना, बलराज साहनी, राजकुमार जी, ऑल द ग्रेट्स वर देयर, तो बहुत कमाल का आलम था। आइए सुनते हैं ये गीत।

रेडियो में 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की दिनांक 3 और शुभ दिन है शुक्रवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवांग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यंगफो, श्री न्यूटन बोरा और श्री अजित बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री संगीताशी तथा अन्य कर्मचारियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वंगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

रेडियो एक्टिव मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीटे न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय।
2: बाबा अमरनाथ बम बम।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत

0: ज्ञान क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट

0: जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। मीडिया में आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति, तत्पश्चात आप सुन सकेंगे उपासना मेहता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश कार्यक्रम वंदना।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शरण योग्य है। रोहतक में तो अनेकों जिलों का हम तो वहाँ हरिजन तो हर जगह के पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन रहते हैं, तो वो मीठा ऐसा है, तो वहाँ तो जाति लोग पड़े हैं, शायद अहिंद लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे हैं। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है, तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे। और पीछे वहां पर जब वो हक की बात आ जाती, हक से नहीं, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे। और बोलना या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी सरकार चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और ऐसा काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ दो बिल्कुल तब पीछे इसी बात पर रहना चाहते, उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पड़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। मैंने तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको क्रिश्चियनों का तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड ले सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है उनको जमा होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है, उसमें आपको

हरि जनों की तो कई कथा बोली सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम न कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है कर्म पड़ा है कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं गुलाम जैसे मानते आए हैं वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया गलती की पाप किया उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं बहुत किया भी है लेकिन सब हमने ये नहीं किया है करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है तो जिसने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना ले लिए है तो उसको ये कर्म कथा आपको सुनाने भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते हैं और अब भी करें अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे हाँ वही ऐसे हैं नहीं तो हम अच्छे हो जाते लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए तो उन पर हमारे ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे जीवन में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है तो अभी मानो ख्रिस्तियों को क्योंकि पहले से करो साफ तो पीछे हम यही तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे अहिंस स्थान बनाएंगे और पीछे हम एक अपनी बनाएगा हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजन को तो अपनाना ही चाहिए वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है वो तो पंचम जाति है ही पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है चार वर्ण है सही तो चार वर्ण का वो अर्थ ये तो है नहीं मेरे वाले एक ऊंचा और दूसरा नीचा लेकिन चार में सब जितने पैसे हो सकते हैं तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना दूसरा का है कि धर्म का रक्षा करना और तीसरा का काम है कि तिजारत करना तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं अपने लिए लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध को भी हो और वो सब प्रजा के लिए है तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहे तो शुद्ध है तो वो सेवा करे लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं साथ साथ बेच सकते हैं ऐसा कोई है नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना है सब सेवा है जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है तो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है और जो चाकरी नौकरी करता है हमारा पानी भरता है झाड़ू निकालता है अनेक काम करता है वो सब सेवा ही सेवा है चारों सेवा है लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़ कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है उसको भूल गई उसका अनर्थ कर लिया पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसमें पीछे पंचम धर्म पैदा किया तो वो तो सब हमारी गलती है हमारी दुष्टता कहो तो बोले हमारे हम धर्मों से हट गए इसलिए हमने किया तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे उपासना मेहता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं नेपालू बो क्यावास में चंद दिगारो मिश्मी आधुनिक नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं में पान ले रहे थे निफालो बो के आवाज में चंद तिगारो मिशमी आधुनिक नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत आइए सुनते हैं पीएम श्री जैनवी तवांग की नवी कक्षा के मिस पेमा चुकी नामों से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करे विषय पर दिए गए संदेश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ पेमा छेकी नामो पीएम श्री जैन वितावांग नौवी की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और स्क्रीन टाइम कम कैसे करें, यह विषय हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। साथियों, स्क्रीन पर नहीं सपनों पर ध्यान दो, मोबाइल नहीं अपने मन की पहचान करो, डिजिटल बनो पर इतना भी नहीं कि असली दुनिया भी खो जाए कहीं। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे जिंदगी का खास हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जब यही तकनीक हमारे समय, ध्यान और स्वास्थ्य को चुराने लगे तब यह सुविधा नहीं बल्कि समस्या बन जाती है। यही समस्या है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है जब हम पराए काम या अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया रील्स या गेम्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम इंसानों ने बुरी आदत बना ली है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले भी मोबाइल चलाना। हमें इन बुरी आदतों को बदलना चाहिए क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कई गंभीर दुष्परिणाम हैं, जैसे पढ़ाई में एकाग्रता की कमी, आंखों में जलन और दर्द, सिर दर्द, रात को सही से नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन और तनाव, परिवार से बातचीत कम हो जाती है, शारीरिक गतिविधि की कमी। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ कभी कभी बस 5 मिनट के लिए फोन चलाती हूँ, देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। समय कैसे

0: भी जाता पता ही नहीं चलता। मोबाइल देखने के कारण समय की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें डिजिटल दुनिया से दूर भाग जाना चाहिए? नहीं, हमें डिजिटल साधनों का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। अब आइए जानते हैं स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। पहला उपाय, समय की सीमा तय करें। अपना मोबाइल और स्क्रीन के लिए रोज एक निश्चित समय तय करें। आजकल मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैकर होता है, उसका सही उपयोग करें। दूसरा उपाय, नोटिफिकेशंस को नियंत्रित करें। हर ऐप का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद करें ताकि ध्यान भंग ना हो। तीसरा उपाय, मोबाइल फ्री समय बनाइए। पढ़ाई के समय, खाने के समय और सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल से दूरी बनाइए। चौथा उपाय, ऑफलाइन गतिविधियों को अपनाइए। खेलकूद, योग, किताबें पढ़ना, संगीत, चित्रकला और परिवार के साथ समय बिताना, ये सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा इलाज है। पांचवा उपाय, उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें। खुद से पूछे, मैं मोबाइल क्यों उठा रहा हूँ? अगर उत्तर है बिना वजह, तो मोबाइल नीचे रख दीजिए। अगर हम इन उपायों का उपयोग अपनी जिंदगी में करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। साथियों, याद रखिए, जब स्क्रीन से दूरी बढ़ेगी तब जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, हम मोबाइल के गुलाम नहीं। आज के छात्र ही कल का भविष्य है। अगर हमारा ध्यान स्क्रीन पर ही अटका रहेगा तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, डिजिटल तकनीक एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन संयम और संतुलन के बिना यह शक्ति कमजोरी बन सकती है। मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है। अगर हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो स्वस्थ और खुश रहेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्क्रीन को नहीं लक्ष्य को देखें, रील्स नहीं रियल लाइफ जिए, मोबाइल से नहीं मन से जुड़े। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैनवी तवांग के नवी कक्षा के मिस पेमा चे के नामों से डिजिटल विचरण और स्क्रीन टाइम कैसे कम करें विषय पर दिए गए वार्ता। श्रोतासी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतो, समय दोपहर के 3:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं जावेद अली की आवाज में फिल्म पुष्पादिराय से। गीत रिकुश आलम का है तथा संगीत देवी प्रसाद का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं केके की आवाज में फिल्म ओम शांति ओम से। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में श्रोता भी आपने आनंद लिया लापता लेडीज फिल्म से गीत। इस गीत के गीतकार थे प्रशांत पांडे तथा संगीतकार थे राम संपत। श्रोता कार्यक्रम का अंतिम नगमा ये आनंद लेते हैं गदर टू फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन की युगल आवाजों में। गीत सईद कदरी के है तथा संगीत मिथुन का।

श्रोताओं अरिजीत सिंह और मिथुन के गाये फिल्म गदर 2 के सिनेगमे के साथ ही महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले ये सुनते हैं यह संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा आइए सुनते हैं, माय नेम इज खान फिल्म से राहत फतेह अली खान और शंकर माधवन की युगल आवाजों में। निरंजन अयंगर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर माधवन ने।

संगीतकार ए आर रहमान के संगीत निर्देशन पर नीति मोहन की आवाज में अयान अली थे कार्यक्रम का अगला नगमा जब तक है जान फम से। इस गीत के गीतकार है गुलजार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये हम आपको सुनवाते हैं। एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुजैन डीमेलो की युगल आवाजों में। शेफ रचना जावेद अख्तर के है तथा धुन ए आर रहमान का।

मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की गोलाबाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया। राजनीति फिल्म से एक खूबसूरत गीत, इस गीत के गीतकार थे इरशाद कमिल तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोता कार्यक्रम का अगला नगमा यह आनंद लेते हैं मैरी कॉम फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत संदीप सिंह के है तथा दुन शिवम का।

श्रोताओं में आपने सुना अरिजीत सिंह और सुनील चौहान की युगल आवाजों में फिल्म शिवाय से यह गीत। इस गीत के गीतकार थे सईद कदरी तथा संगीतकार थे मिथुन। श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम नगमा का यह आनंद लेते हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म से अरिजीत सिंह बादशाह जोनीता गांधी और नकशिश अजीज की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार है प्रीतम।

0: Fucking splat.
1: अरिजीत सिंह बादशाह जोनिता गांधी और नकशी शाजीज के गाये फिल्म ए दिल है मुश्किल के इसी नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा कुछ ही अंतराल बाद।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में ले जाइए, सुनते हैं वीजी जोग से राग श्याम कल्याण पर वॉलिन वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं अरुण घोष। तो लीजिए पेश कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे वीजी जोक से राग श्याम कल्याण पर वॉलिन वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे अरुण घोषाल। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित आपसे कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षा राज्य मंत्री पीटी सोना के साथ रामकृष्ण मिशन बैरुल मठ के सहायक महासचिव स्वामी बोधेश्वर नंदन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के टिकदो में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। तवांग उपायुक्त नामिया लांगमो ने जांग में स्थित थिंदुरिंग स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के नेक्स्ट जेन एआई एवं रोबोटिक्स स्टेम लैब का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत ने ऑपरेशन अनस्टार के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अभी भी लापता। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर रनआउट 16 में जगह बनाई है। आज के मुकाबले में भारतीय समयानुसार रात 11:30 से ऑस्ट्रेलिया का सामना इजिप्त से होगा। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश के लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से नरेश बागशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया है। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्रप्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना के साथ रामकृष्ण मिशन बैलूर मठ के सहायक महासचिव स्वामी बोधेश्वर

0: अरविंद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में आलो और नरोत्तम नगर में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने पर चर्चा की गई। इसे अरुणाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि राज्य में रामकृष्ण मिशन की शिक्षा एवं समाज की सेवा एक की गौरवशाली और सम्मानित विरासत यही है तथा प्रस्तावित संस्थानों के शैक्षणिक उत्कृष्टता, मूल्य आधारित शिक्षा और युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश के तिग्दो में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पीवीजी रामजी का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पीवीजी रामजी का शुभारंभ राज्य में पारदर्शी, दक्ष और नागरिक केंद्रित ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की जमीन स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा अरुणाचल प्रदेश के गांव में समावेशी और सतत विकास की गति देने के लिए भी प्रतिबद्धता को दोहराता है। तवांग उपायुक्त नांग्या लांगमो ने जांग में युथेम्बू स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय नेक्स्ट जेनरेशन AI एवं रोबोटिक्स स्टेम लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने रिसोर्स पर्सन, शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत की तथा शिक्षकों को स्टेम लैब का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक एवं अनुभव के साथ शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विषयों के शिक्षक अपनी कक्षाओं में स्टेम लैब को शामिल करें जिससे शिक्षण अधिक रोचक, नवाचार और भविष्योन्मुख बन सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमण ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस AI के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, UPI, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। भारत में भूकंप प्रभावित वेनेजुएला और में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सकीय सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्रेज ने 7 दिन के राष्ट्र शोक की भी घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले हफ्ते काराकास के उत्तर क्षेत्र में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही मची हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव एवं राहत कार्य अभी जारी है। और अब खबरें खेल जगत से।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। पुर्तगाल राउंड ऑफ 32 के मैच में क्रोएशिया को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। मंगलवार को उसका सामना डेलस में राउंड ऑफ 16 में स्पेन से होगा। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के

समृद्ध ब्लिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नातर दानिंग एकेडमिक सेशन नीतों खेलिक्रोनिंग नीतों खेलिनिस लोका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन उद्लेक तारीख खेलिथिक थोर कोचुया तेरिक खेलिब्ली संपा नालिंग चुसे चिक्तोर कुंसिजुक चुसे ने संपा लोंग नायुकिनो निंग तारीख खेलिनिस निंग तारीख खेलिकेचे नालिंग चुसे नेक्तोर कुंसिजुक चुसे ने संपा लेट पी लोंया एडमिशन मिरिकिंबर राजब गंदे चुकलक लुप्र चिनबसे कठिम निंग लामदन नाउ सिजुंग याक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लोंयुक थोका तवंग डिस्ट्रिक नेंक लुप्रुपा का लुप्चंग याया AISCE नेना जिंदा चिंगने का मार्क्स परसेंटेज न्यूदाले क्याचा खेने थपो कुसुनिंग डिस्ट्रिक पिसोक होंगन नंग मार्क न्यूदाले क्याचा खेने लेंगा दंबचे नीतों खेलिक्रो का CUET पास यागो कुसुनिंग इंग्लिश कम्या सब्जेक्ट लेंगा का पास यागो कुसुंबुर एडमिशन लोंगपुर सुना होना इच्छा एडमिशन ना मिजुकिंबुर डिपार्टमेंट टीका सीट बनांग कांप डिम सरोइना इच डिपार्टमेंट का ताऊ एडमिशन मुलायुकिंबुर डिपार्टमेंट टीडी का सीट मुप्चु नंबर एडमिशन लोंगपुर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी यांगना अपार नंबर नेबरदो कुसुमपुर दोजु खंडो गवर्नमेंट कॉलेज तवांगा एडमिशन नोयुक देवनेकन लुप्टुनांग डॉक्यूमेंट्स यिक्चिनाक छेबेन उयगोनी दांपचे क्लास चिक ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट दंबा एटेस्टेड कॉपी नई कुसुमपुर निपचे क्लास चिनिक ओरिजिनल मार्कशीट दंबा एटेस्टेड कॉपी नई ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी दंबा एटेस्टेड कॉपी नई नीतों खेली ग्रो का CUET अंडर ग्रेजुएट कक मार्कशीट फोटो कॉपी टी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी यांगना अपर आईडी कार्ड कॉपी टी कुसुमपुर एसटी सर्टिफिकेट एटेस्टेड कॉपी टी पासपोर्ट साइज परसुम निंग परिज्ञप का रंग मेंग निंग क्लास ब्लू कुसुमपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल CBSE मेनो नदी फिसोक स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल का लोपचंग यकन लोपुनांग ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट दंबा एटेस्टेड कॉपी थी डिस्ट्रिक्ट फिसोक ओंगन लोपुनांग रंग फम निंगपुनसनांग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इम्प्लॉयर यांगना ट्रांसफर ऑर्डर कुसुमपुर गेसी क्लास चिंगने पास यागोक्योग लुन्ने लोपचंग यामे मतोंगो लिगन लोपुनांग जुडिशियल मजिस्ट्रेट यक जोसो एफिडेविट गेप सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी कुसुमपुर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब लोपुनांग आधार कार्ड एटेस्टेड कॉपी थी रंक ईमेल आईडी निंग रजिस्टर नो मोबाइल नंबर कुसुमपुर लंगेनांग उत दमचे सेटा नगने सुसुसी दोस लंगेनांग दा उजुक सुचे लेरिम सेरा का देशनुप्तिक लेरिम डेटेनिंग सुजकोर दुरी के जुस सनासा दाते सिटिक जुक सुजकोर निकर्म खलीचे नुमी मोतो जेदन लेरिमा लम मेतोटिशी लम रिंजन सेवंग आनी लुपसंग चेंगनिंग आने लुपसंग चे तुनसी तुनु लम चेब सनासा सुजनिसन कर्म चीचे लेरिम पोयम अप्टिटे लेरिम दर्पन देशनुप सुजनिसन कर्म चीचे सनासा चुसे निश्चित कर्म कहने चिलंचे लेरिम कोमी तराने लंजे इडंग बसे वसब डाइजी क्यूया तुदे नंगो हिंदी फिल्म निंबक समकाशे देशनुप चुसे केचे लेरिम पुराने हिंदी फिल्म कीट का सनासा चुसे किन्हीं पेशाचे स्पोर्ट स्कैन चुसे किन्हीं कर्म कहने लेंगचे समाचार सिंधियानी

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफ 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:11 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनते हैं एक जरूरी सूचना। दर्जी खंडू कॉन्वेंट कॉलेज तवांग के प्रिंसिपल डॉक्टर ईशी केचन से प्राप्त प्रवेश अधिसूचना अनुसार दर्जी खंडू कॉन्वेंट कॉलेज तवांग में एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए 4 वर्षीय स्नातक बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन 21 जुलाई 2026 से शुरू किया जा रहा है। प्रोस्पेक्टस 8 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इशू किया जाएगा। CUET UG 2026 क्वालिफाई करने वाली छात्राओं की एडमिशन बिना लेट फी के 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा और लेट फी के साथ 27 जुलाई और 28 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। BFS सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार है। ओरिजिनल क्लास 3 पास सर्टिफिकेट और 2 एटेस्टेड कॉपीज, 12वीं कक्षा की ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 2 एटेस्टेड कॉपीज, ओरिजिनल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट और 2 एटेस्टेड कॉपीज, CUET UG 2026 मार्कशीट की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की एक फोटोकॉपी, SG सर्टिफिकेट की एक अटेस्टेड कॉपी, सफेद कपड़े में हाल ही में खींची 3 पासपोर्ट साइज फोटो, अरुणाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले छात्र ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और उसकी एक अटेस्टेड कॉपी, ऐसे छात्र जिनके माता पिता या अभिभावक जलग्रहण क्षेत्र में कार्यरत है उनके ट्रांसफर ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी, 2 साल की कैफ पीरियड पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी, APST स्टूडेंट्स आधार कार्ड की एक अटेस्टेड कॉपी, वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एडमिशन के समय छात्रों को अपने लोकल गार्जियन को साथ लाने की सलाह दी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलों के स्कूल

के छात्र भी कॉलेज में प्रवेश के पात्र होंगे। प्रवेश पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। एक बार किसी विभाग में सीटें भर जाने के बाद उस विषय के लिए आगे कोई प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विभाग में सीटों की अधिकतम सीमा 50 है, जो इस प्रकार है: इंग्लिश 50 सीट्स, इकोनॉमिक 50 सीट्स, जियोग्राफी 50 सीट्स, हिंदी 50 सीट्स, हिस्ट्री 50 सीट्स और पॉलिटिकल साइंस 50 सीट्स। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सीबीएसई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के बोर्ड से प्राप्त समकक्ष परीक्षा AISSCE में कैचमेंट एरिया से कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक और कैचमेंट एरिया के बाहर से कुछ मिलाकर 45% अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को, जिसमें अंग्रेजी सहित 5 विषय शामिल हो, इस श्रेणी में प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा। प्रवेश के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक, ABC कार्ड या अपार कार्ड अनिवार्य है। सूचना समाप्त हुआ। श्रोतों, कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रमों में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर आप सुन सकेंगे दैनिक शेदन लेडम में लामा मेतो ताशी लामा रिंचन सेवांग अनि लोफसंग सेयांग और अनि लोफसंग सेतुन से लामा चेपा। आज शाम 7 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत LG स्कॉलर होम विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र टाशी वेजर से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा एक माँ की बेबसी। आज शाम 7:11 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे लता मंगेशकर के संग अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म फकीरा से लता मंगेशकर, कवि अजनबी थे से लता मंगेशकर, लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर, जूली से लता मंगेशकर, फिल्म सनम बेवफा से लता मंगेशकर और फर्स्ट लव लेटर से लता मंगेशकर की आवाज में चंद नगमे। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा शाम 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म फना से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आयर की आवाज में। आज रात्रि 8 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। आज रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज सेट 9 आप सुन सकेंगे ठीक रात्रि 9:00। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा भी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। अब से कुछ ही पलों में कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रूपये की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit.

0: आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आइए सुनते हैं एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र टाशी वेजर से एक कविता। कविता का शीर्षक है एक माँ की बेबसी।
1: नमस्कार सभी को, मेरा नाम टाशी वेजर है। मैं एलडी स्कॉलर होम का छात्र हूँ और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के लिए एक कविता पढ़ना चाहूँगा और मेरे कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को ना इशारों में कही उसकी बातों को ना उसकी बेबित आँखों में हर समय दिखती। उसके अंदर की छटपटाहटों को कितनी देर वह रहता। पास बैठती उसकी माँ नहराती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। रतन में अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। धन्यवाद।
0: श्रोता भी आपने सुना एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र टाशी वेजर से एक कविता। कविता का शीर्षक थे एक माँ की बेबसी। श्रोता के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं एक ही कलाकार लता मंगेशकर के गाये छंद हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार है संतोष आनंद तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारलाल।

श्रोतों में आपने सुना फिल्म पकीरा से लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार थे रविंद्र जैन। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा यानत लेते हैं कभी अजनबी थे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत देव कौली के है तथा संगीत विजय सिंह का।

श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत एक ही कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में चंद नगमे। दर्पण कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं लव इन टोक्यो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। हर्षद जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जेडी पंचल और एसएस रघुवंशी ने।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं जूली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है राजेश रोशन।

इसी होता भी आपने सुना सनम बेवफा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत सावन कुमार के थे तथा संगीत महेश किशोर का। श्रोतों कार्यक्रम का अंतिम नगमा ये सुनते हैं फर्स्ट लव लेटर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, गीत अनजान के है तथा संगीत बप्पी लहरी का।

शोधन लता मंगेशकर के गाये फिल्म फर्स्ट लव लेटर केसी नकवी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की क्षमता के साथ विकसित की गई है। प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य विमानन आधारित विकास के अगले चरण को गति देना है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत परिशोधन सहित कई क्षेत्रों में संबंधित रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

0: सतत लचीले और नवाचार आधारित विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पेरिस में भारत फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, ऊर्जा परिवर्तन तथा भू राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौरे से गुजर रही है। वित्त मंत्री ने फ्रांस के उद्योगों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भारत का भागीदार बनने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भारत और फ्रांस विश्वसनीय साझेदार है। उन्होंने कहा है कि ये साझेदारी विश्वसनीय एआई, डिजिटल अवसंरचना और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करती है। कृषि राज्य मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने आज बंदरदेवा चेकगेट और बंदरदेवा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। वे राज्य में इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली की समीक्षा और उससे जुड़े विभिन्न समुदाय और संबंधित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भी की है। पुलिस कर्मियों तथा ILP जारी करने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों ने बातचीत कर ILP सत्यापन और प्रणाली की प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। बैठक में मौजूदा समस्याओं तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूत करने के संभावित उपायों पर चर्चा की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जमीनी स्तर से प्राप्त मूल्यवान सुझाव और इसमें सीमांत राज्य में एक सुदृढ़ और प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिकेन कोयू ने आज अरुणाचल प्रदेश में सभी जिलों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ERO के साथ एक महत्वपूर्ण राज्यव्यापी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जमीन स्तर पर SIR गणना प्रपत्रों के वितरण तथा उनके जारी डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रपत्रों के वितरण को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल समाधान अपनाने के माध्यम से निर्वाचन प्राधिकरण राज्यभर में निर्बाध, पारदर्शी और पूरी तरह से अद्यतन निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के कार्यान्वयन संबंधी परिचालन दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया है। इसमें विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को उनके स्वयं के स्रोत से राजस्व संग्रह को सुदृढ़ बनाकर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने कहा है कि सशक्त पंचायत आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत की आधारशिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के रसायन विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज को दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नियमित कुलपति नियुक्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नियुक्ति के साथ विश्वविद्यालय में लगभग 2 वर्षों से जारी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। उप सचिव श्रेय भारद्वाज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर शिवराज की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अथवा उनके 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने लंदन के कैनिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मुकाबला तय किया है। और फीफा विश्व कप में भारतीय समय अनुसार आज रात 11:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट से होगा। इससे पहले स्पेन में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब राउंड ऑफ 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोएशिया से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar. The news read by Hageani. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit to Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. During his visit, he will also lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways,

इस युद्ध में अपने सुना फना फम से माँ लक्ष्मी अय की आवाज में यह गीत एक देशभक्ति गीत। इस गीत के गीतकार थे परोसन जोशी तथा संगीतकार थे जतिन ललित। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के 8 बजे हैं और प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है मन मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत राजेंद्र कृष्ण के है तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है मीर नगर उमरकंद महाराष्ट्र से आफ है अभिजीत गवनकर राही, मिसेस सरिता गवनकर और प्रिंस

0: एकांश कवंकल आखर हाइट बाजा दूरा नागपुर से आफ है सिद्धार्थ कवंकल परिणीता कवंकल लाडला टुक टुक कवंकल आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं ये गीत।
1: झूमता माँ

मैं श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है मीरूट कैंट से दिग्दर्शन गौर और कविता गौर। मालवा रेडियो लिसनर एसोसिएशन रतलाम मध्य प्रदेश से आप सब है जगदीश दाखंड नाइमा, मिसेस रंजू बाई दाखंड, युवराज सिंह दाखंड और शिवांगी दाखंड। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का।

0: गीत फिल्म उजाला से मन्ना दे और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: झूमता माँ

श्रोता समय आप आना ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा ये सुनते हैं 10 नंबरी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल तथा संगीतकार है मैस्ट्रो सुतनपुरी। इस गीत की फरमाइश की है गांधी चौक परमार राजस्थान से आप है बबलेश पनवार, दैनी पनवार और मनीष पनवार, रामदेवरा से आप है दिनेश चौहान, डांगरी से

आप है बाबूराम जयपाल, खलीफा की बावरी से आप है खुदा बख्शी। तो आइए नदली थे आप सबके फरमाइश पर ये गीत फिल्म 10 नंबरी से

आप सब है पद्मा टर्किस नापानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रकेश शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभी शाह अश्विन शाह मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सबकी फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जानवर से उदित नारायण और सुनिधि चौहान की गुलाबाजों में। समीर की रचित इस गीत को संगीत से सवारा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम परामर्श हमें प्राप्त हुआ है लाओ पेगंग बस्ती से आफे पेमा टाशी तंजिंदाबाद सिटी मियांगचिन दोर्जी और नाको। आप सबके परामर्श पर यह आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मन से उदित नारायण और अलका यादवी के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है संजीव दर्शन।

श्रोताभ्य पाने ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्स फरमाशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अभी पर समाप्त होता है। चौथा हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अब से कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। श्रोताओं से भी चाहिए आनंद लेते हैं फिल्म साजन से गीत पंकज उदास की आवाज में। गीत समीर के है तथा संगीत नदीम शवन का।

سزا नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा

मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू, और तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से

0: इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रिल एम्बोलो और डेन नडोई ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रिल एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। डेन नडोई ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोई का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: And they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया। वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: And Mikel Oyarzabal says, I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेंसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वेलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
4: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वेलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो वेटानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर पहुंचने वाले केवल चौथे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
5: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू

0: पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज एक ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीष शर्मा।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डक्सेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुने लोस 11 रन ही बना सके, जबकि क्लो ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए। बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले 2 विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
3: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोउ में होने वाला ISSF विश्व कप एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के 2 बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्कीट

0: स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज धालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अल्माटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का शानदार उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनिश गिरी को मात दी। सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट।
2: ईरान के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 12 में से 10 अंक हासिल करके अपनी बढ़त 3 अंक तक पहुंचा दी है। जर्मनी के विंसेंट कीमर, फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, रोमानिया के डियग बोगदान डैनियल और गुकेश के समान 7 अंक हैं और वो संयुक्त दूसरे स्थान पर है। भारत के आर प्रज्ञान नंदा, गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डैनियल के खिलाफ अप्रत्याशित हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11, 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22, 21-17, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड दो कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: India's position on the Indus Waters Treaty.
5: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
3: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में

0: भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's Development Assistance।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके

0: सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
2: आज महाराष्ट्र के कई

0: सो में बारिश हुई जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।